0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

मैं ये समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं। वे फंदे जैसी हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंस जाता है। उपदेशक कहता है कि मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन सब में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल कर दिया। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। इस अध्याय में उपदेशक प्रज्ञा और बुद्धि क्या है यह समझने का प्रयत्न करता है। कहता है कि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। दुष्टता स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है, जबकि मूर्खता विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है। इसीलिए इन दोनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। सातवें अध्याय में उपदेशक इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपने जीवन को मुश्किल में डाल देती है। और इस अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक सुलेमान कहता है कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं। वे अपने करतूतों से, अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल हैं जिसमें व्यक्ति आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। श्रोताओं, इस बात की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे सांसारिक भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई का पता लग गया था। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ था। वह कहता है कि उसे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन हजार में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। अपने निष्कर्ष में वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 16 पदों वाले इस अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। 8वें अध्याय के पहले पद में ही वह बुद्धिमान को परिभाषित करते हुए कहता है, बुद्धिमान के सदृश कौन है, सृष्टि का रहस्य कौन जानता है, प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है, समझदार व्यक्ति जैसा कौन है। यह सवाल कर सुलेमान ने एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश की जो विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। उपदेशक इस बात से भलीभांति परिचित था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी, समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी, समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए कहता है कि समझदार बने और समझदारी से बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। आगे 2 से लेकर 4 तक के पदों में उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, तुम उसके यहां उतावली में नहीं जाओ, तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है, कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं। श्रोताओं, रोमियो को प्रेषित पत्र के 13वें अध्याय में संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता और अपने पर दंडाज्ञा बुलाता है। इसी अध्याय के 3रे पद में संत पॉल कहते हैं कि शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त रहना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओं, उपदेशक इस बात को समझ गया था कि यदि सभी शासक की बात को मानेंगे तभी समाज में व्यवस्था कायम की जा सकेगी। उसका कहना है कि हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए उनका सम्मान करें क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करते हैं। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ के प्राचीन और नवीन दोनों व्यवस्थानों की दृष्टि से उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 2रा पद सही और तर्कसंगत है। उपदेशक सुलेमान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जब इंसानी कानून और ईश नियमों के बीच टकराव होता है तब इससे मनुष्य का ही अहित होता है, जैसा कि प्रेरित चरित ग्रंथ के 4थे अध्याय के 19वें पद में प्रेरितवर पेत्रुस और योहन कहते हैं, आप लोग स्वयं निर्णय करें कि क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें, हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य यानी कि अन्याय दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है, अंत को नहीं अनंत को देखने की आवश्यकता है, ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापालियो 14वें की आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा 6 से 12 जून तक स्पेन में निर्धारित है, जहां वे 2000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैड्रिड, बार्सिलोना और कैनरी द्वीपों का दौरा करेंगे। वैटिकन प्रेस के संचालक ने पत्रकारों के लिए संत पापा की चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा की रूपरेखा बतलाई। मत्तियो ब्रूनी ने संत पापा की तीर्थ यात्रा के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एक ऐसी जमीन जिसने मध्य युग के बीचों बीच अलग अलग दुनियाओं के मध्य वार्ता का प्रयोगशाला होने का काम किया। उन्होंने कहा, स्पेन में संत पापा कलिसिया और जन सामान्यों हेतु संस्थानों के साथ साथ हजारों युवाओं, परिवारों और खेल, संस्कृति और मनोरंजन की दुनिया के लोगों से मिलते हुए इस समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखेंगे। अलगाव को दूर करने के लिए एक साधन कलिसिया के स्वरूप वे राजनीति और संस्कृति के मध्य वार्ता करेंगे, साथ ही तकनीकी और मानवीय विकास पर चिंतन, नया विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटातिस पर प्रकाश डालते हुए संत पापा 23 वार्ताओं, कई भेंट करते हुए प्रवचन देंगे। वैटिकन प्रवक्ता ने कहा कि निश्चित रूप में युद्धों के इस दौर में शांति की विषय वस्तु एक मुख्य केंद्र बिंदु होगा। ऐसे समय में जब हथियारों के इस्तेमाल को तेजी से सही ठहराया जा रहा है, इससे जुड़ी विषय वस्तु निःशस्त्रीकरण एक मुख्य विषय वस्तु होगी। मत्तियो ब्रूनी ने कहा कि संत पापा की यात्रा कलिसिया की ओर से एक निशानी और प्रोत्साहन होगी। कलिसिया को विभिन्न स्तरों पर अब भी बहुत सारी चीजें करनी है। जीवन की रक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें हर एक जीवन की रक्षा करने की जरूरत है, विशेषकर उनकी जो अति संवेदनशील है। यह विषय वस्तु प्रवासन को अपने में समाहित करती है, जो संत पापा की कैनरी द्वीप की भेंट में विशेष रूप से उभर कर आएगी। एक ऐसी जगह जिसने हाल के सालों में कुख्यात अटलांटिक प्रवासन से जुड़े अनगिनत मानवीय और पारिवारिक त्रासदियों को देखा है। इन स्थानों पर संत पापा प्रवासियों की जीवन गाथा, स्वागत किए जाने के साक्ष्य और मिलन की बातों से रूबरू होंगे। एक प्रेरितिक भूमि जहां से संतों ने सुसमाचार के प्रचार हेतु पलायन किया। इस यात्रा में संत पापा यीशु ख्रिस्त की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो गाउदी के प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। संत पापा ग्रैन कैनारिया में आइगुने गुइन के बंदरगाह की भेंट करेंगे, जो शर्म का घाट कहा जाता है, क्योंकि हजारों प्रवासी, खासकर पश्चिमी अफ्रीका से आने वाले, वहां बड़ी भीड़ और खतरनाक हालत का सामना करते हैं। संत पापा के संग इस प्रेरित यात्रा में कार्डिनल एंजल फर्नांडिस 8वें, जो समर्पित जीवन और प्रेरित कार्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ समिति के अध्यक्ष हैं, महाधर्माध्यक्ष फिलिपो इयानोन, धर्माध्यक्ष सभा के अध्यक्ष और महाधर्माध्यक्ष लूस मारिन डे सैन मार्टिन, जो संत पापा के दान पुण्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ के अध्यक्ष हैं, यात्रा करेंगे। उधर CBCI भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनी पोला ने संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरित पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की प्रशंसा करते हुए उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में एक स्पष्ट नैतिक दिशा सूचक घोषित किया। कार्डिनल पोला ने संत पापा लियो के प्रथम विश्व प्रेरित पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह एक नैतिक दिशा निर्देशिका है, जिसके माध्यम प्रभावकारी ढंग से विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। कार्डिनल पोला ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि बेरोजगारी, असमानता, निगरानी और किसी एक के हाथों में शक्ति का होना भारत के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। संत पापा का नया विश्व प्रेरितिक पत्र इन मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए हम में जागरूकता उत्पन्न करता है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैग्निफिका ह्यूमैनिटास उन समस्याओं से निपटने हेतु हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे ईश्वर के रूप में सृजित मानवीय जीवन के सम्मान को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा, तकनीकी विकास को चाहिए कि वह नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे जिससे मानवीय सम्मान, न्याय और जन सामान्य की भलाई बनी रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सभी कैथोलिकों और नेक विचार वालों से आग्रह करते हैं कि वे संत पापा के इस विश्व प्रेरित पत्र का अध्ययन प्रार्थना के मनोभाव से करते हुए एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करें जिसमें तकनीकी इंसान के समग्र विकास हेतु मदद करती हो। सेनेगल का एक प्रवासी युवक संत पापा लियो से भेंट करने की प्रतीक्षा में है जिससे वह उन्हें यह आग्रह कर सके कि वे प्रवासियों की और अधिक सहायता करें जो पलायन के दौरान मर जाते हैं। यह एक सेनेगल युवक की कहानी है जो 2020 में एक जहाज के डूबने से बचाया गया था जिसमें उसने अपने भाई और कई दूसरे लोगों की मौत देखी थी। ओसेनो जो अब ग्रैंड कैनेरिया में रहते हैं प्रवासन के उपरांत संत पापा फ्रांसिस को एक पत्र में लिखा था जिसे पढ़कर वे बहुत भावुक हो गए थे। ओसेनो ने वैटिकन मीडिया से बातें करते हुए कहा, अगर मैं संत पापा से बात कर पाता तो सबसे पहले उनसे यह कहता कि वे उन प्रवासियों के लिए और अधिक मदद करें जो रास्ते में मर जाते हैं, जो लोग यहाँ आना चाहते थे लेकिन कभी नहीं आ पाए। 11 जून की सुबह ओसेनो संत पापलियो 14वें का स्वागत करेंगे, सिर्फ एक प्रवासी की भांति नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा

0: अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

मैं ये समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं। वे फंदे जैसी हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंस जाता है। उपदेशक कहता है कि मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन सब में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल कर दिया। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। इस अध्याय में उपदेशक प्रज्ञा और बुद्धि क्या है यह समझने का प्रयत्न करता है। कहता है कि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। दुष्टता स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है, जबकि मूर्खता विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है। इसीलिए इन दोनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। सातवें अध्याय में उपदेशक इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपने जीवन को मुश्किल में डाल देती है। और इस अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक सुलेमान कहता है कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं। वे अपने करतूतों से, अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल हैं जिसमें व्यक्ति आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। श्रोताओं, इस बात की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे सांसारिक भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई का पता लग गया था। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ था। वह कहता है कि उसे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन हजार में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। अपने निष्कर्ष में वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 16 पदों वाले इस अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। 8वें अध्याय के पहले पद में ही वह बुद्धिमान को परिभाषित करते हुए कहता है, बुद्धिमान के सदृश कौन है, सृष्टि का रहस्य कौन जानता है, प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है, समझदार व्यक्ति जैसा कौन है। यह सवाल कर सुलेमान ने एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश की जो विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। उपदेशक इस बात से भलीभांति परिचित था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी, समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी, समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए कहता है कि समझदार बने और समझदारी से बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। आगे 2 से लेकर 4 तक के पदों में उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, तुम उसके यहां उतावली में नहीं जाओ, तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है, कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं। श्रोताओं, रोमियो को प्रेषित पत्र के 13वें अध्याय में संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता और अपने पर दंडाज्ञा बुलाता है। इसी अध्याय के 3रे पद में संत पॉल कहते हैं कि शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त रहना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओं, उपदेशक इस बात को समझ गया था कि यदि सभी शासक की बात को मानेंगे तभी समाज में व्यवस्था कायम की जा सकेगी। उसका कहना है कि हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए उनका सम्मान करें क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करते हैं। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ के प्राचीन और नवीन दोनों व्यवस्थानों की दृष्टि से उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 2रा पद सही और तर्कसंगत है। उपदेशक सुलेमान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जब इंसानी कानून और ईश नियमों के बीच टकराव होता है तब इससे मनुष्य का ही अहित होता है, जैसा कि प्रेरित चरित ग्रंथ के 4थे अध्याय के 19वें पद में प्रेरितवर पेत्रुस और योहन कहते हैं, आप लोग स्वयं निर्णय करें कि क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें, हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य यानी कि अन्याय दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है, अंत को नहीं अनंत को देखने की आवश्यकता है, ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें की आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा 6 से 12 जून तक स्पेन में निर्धारित है, जहां वे 2000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैड्रिड, बार्सिलोना और कैनरी द्वीपों का दौरा करेंगे। वैटिकन प्रेस के संचालक ने पत्रकारों के लिए संत पापा की चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा की रूपरेखा बतलाई। मत्तियो ब्रूनी ने संत पापा की तीर्थ यात्रा के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एक ऐसी जमीन जिसने मध्य युग के बीचों बीच अलग अलग दुनियाओं के मध्य वार्ता का प्रयोगशाला होने का काम किया। उन्होंने कहा, स्पेन में संत पापा कलिसिया और जन सामान्यों हेतु संस्थानों के साथ साथ हजारों युवाओं, परिवारों और खेल, संस्कृति और मनोरंजन की दुनिया के लोगों से मिलते हुए इस समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखेंगे। अलगाव को दूर करने के लिए एक साधन कलिसिया के स्वरूप वे राजनीति और संस्कृति के मध्य वार्ता करेंगे, साथ ही तकनीकी और मानवीय विकास पर चिंतन, नया विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटातिस पर प्रकाश डालते हुए संत पापा 23 वार्ताओं, कई भेंट करते हुए प्रवचन देंगे। वैटिकन प्रवक्ता ने कहा कि निश्चित रूप में युद्धों के इस दौर में शांति की विषय वस्तु एक मुख्य केंद्र बिंदु होगा। ऐसे समय में जब हथियारों के इस्तेमाल को तेजी से सही ठहराया जा रहा है, इससे जुड़ी विषय वस्तु निःशस्त्रीकरण एक मुख्य विषय वस्तु होगी। मत्तियो ब्रूनी ने कहा कि संत पापा की यात्रा कलिसिया की ओर से एक निशानी और प्रोत्साहन होगी। कलिसिया को विभिन्न स्तरों पर अब भी बहुत सारी चीजें करनी है। जीवन की रक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें हर एक जीवन की रक्षा करने की जरूरत है, विशेषकर उनकी जो अति संवेदनशील है। यह विषय वस्तु प्रवासन को अपने में समाहित करती है, जो संत पापा की कैनरी द्वीप की भेंट में विशेष रूप से उभर कर आएगी। एक ऐसी जगह जिसने हाल के सालों में कुख्यात अटलांटिक प्रवासन से जुड़े अनगिनत मानवीय और पारिवारिक त्रासदियों को देखा है। इन स्थानों पर संत पापा प्रवासियों की जीवन गाथा, स्वागत किए जाने के साक्ष्य और मिलन की बातों से रूबरू होंगे। एक प्रेरितिक भूमि जहां से संतों ने सुसमाचार के प्रचार हेतु पलायन किया। इस यात्रा में संत पापा यीशु ख्रिस्त की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो गाउदी के प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। संत पापा ग्रैन कैनारिया में आइगुने गुइन के बंदरगाह की भेंट करेंगे, जो शर्म का घाट कहा जाता है, क्योंकि हजारों प्रवासी, खासकर पश्चिमी अफ्रीका से आने वाले, वहां बड़ी भीड़ और खतरनाक हालत का सामना करते हैं। संत पापा के संग इस प्रेरित यात्रा में कार्डिनल एंजल फर्नांडिस 8वें, जो समर्पित जीवन और प्रेरित कार्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ समिति के अध्यक्ष हैं, महाधर्माध्यक्ष फिलिपो इयानोन, धर्माध्यक्ष सभा के अध्यक्ष और महाधर्माध्यक्ष लूस मारिन डे सैन मार्टिन, जो संत पापा के दान पुण्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ के अध्यक्ष हैं, यात्रा करेंगे। उधर CBCI भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनी पोला ने संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरित पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की प्रशंसा करते हुए उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में एक स्पष्ट नैतिक दिशा सूचक घोषित किया। कार्डिनल पोला ने संत पापा लियो के प्रथम विश्व प्रेरित पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह एक नैतिक दिशा निर्देशिका है, जिसके माध्यम प्रभावकारी ढंग से विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। कार्डिनल पोला ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि बेरोजगारी, असमानता, निगरानी और किसी एक के हाथों में शक्ति का होना भारत के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। संत पापा का नया विश्व प्रेरितिक पत्र इन मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए हम में जागरूकता उत्पन्न करता है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैग्निफिका ह्यूमैनिटास उन समस्याओं से निपटने हेतु हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे ईश्वर के रूप में सृजित मानवीय जीवन के सम्मान को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा, तकनीकी विकास को चाहिए कि वह नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे जिससे मानवीय सम्मान, न्याय और जन सामान्य की भलाई बनी रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सभी कैथोलिकों और नेक विचार वालों से आग्रह करते हैं कि वे संत पापा के इस विश्व प्रेरित पत्र का अध्ययन प्रार्थना के मनोभाव से करते हुए एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करें जिसमें तकनीकी इंसान के समग्र विकास हेतु मदद करती हो। सेनेगल का एक प्रवासी युवक संत पापा लियो से भेंट करने की प्रतीक्षा में है जिससे वह उन्हें यह आग्रह कर सके कि वे प्रवासियों की और अधिक सहायता करें जो पलायन के दौरान मर जाते हैं। यह एक सेनेगल युवक की कहानी है जो 2020 में एक जहाज के डूबने से बचाया गया था जिसमें उसने अपने भाई और कई दूसरे लोगों की मौत देखी थी। ओसेनो जो अब ग्रैंड कैनेरिया में रहते हैं प्रवासन के उपरांत संत पापा फ्रांसिस को एक पत्र में लिखा था जिसे पढ़कर वे बहुत भावुक हो गए थे। ओसेनो ने वैटिकन मीडिया से बातें करते हुए कहा, अगर मैं संत पापा से बात कर पाता तो सबसे पहले उनसे यह कहता कि वे उन प्रवासियों के लिए और अधिक मदद करें जो रास्ते में मर जाते हैं, जो लोग यहाँ आना चाहते थे लेकिन कभी नहीं आ पाए। 11 जून की सुबह ओसेनो संत पापलियो 14वें का स्वागत करेंगे, सिर्फ एक प्रवासी की भांति नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: दौर और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
1: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर कृपा।

प्यारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। जनरल असेंबली हॉल में मंगलवार 2 जून को हुए गोपनीय मतदान में बांग्लादेश के विदेश मंत्री को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के उनके प्रतिद्वंद्वी अंद्रयास काकोरिस को 91 मत हासिल हुए। 193 सदस्य देशों वाले यूएन महासभा में कुल 190 वोट डाले गए और कोई मत अमान्य नहीं था। यूएन महासभा की वार्षिक अध्यक्षता भौगोलिक आधार पर 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी बारी से साझा की जाती है और सितंबर 2026 से आरंभ होने वाले 81वें सत्र की बागडोर की उम्मीदवारी इस वर्ष एशिया प्रशांत समूह के पास थी। राजनयिक रहमान ने निर्वाचित होने के बाद कहा कि वह इस दायित्व को एक ऐसे क्षण में संभालेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है, और इसके मद्देनजर उनका कार्यकाल भरोसे की बहाली, रूपांतरकारी बदलावों के प्रबंधन और सर्वजन के लिए वादों को साकार करने पर केंद्रित होगा। महासभा 81वें सत्र के लिए उनकी थीम है विश्वास की पुनर्व्यवस्था, परिवर्तन का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन की आवश्यकताओं को पूरा करे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 विशिष्ट प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है: शांति व सुरक्षा, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी, जलवायु कार्यवाही व पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, उभरती टेक्नोलॉजी की संचालन व्यवस्था और यूएन सुधार। विदेश मंत्री रहमान अपना एक वर्षीय कार्यकाल 8 सितंबर को शुरू करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप का सामना करने के प्रयासों में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अलबत्ता परीक्षण, निगरानी और सामुदायिक विश्वास जीतने में अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने इबोला प्रकोप से निपटने में DRC के साथ खड़े होने का संकल्प व्यक्त किया। डॉक्टर टेड्रोस DRC की यात्रा से लौटने के बाद बुधवार को जिनेवा में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए उम्मीद जताई, इस बीमारी के प्रकोप को एक बड़ी बढ़त मिल गई थी और हम अब भी पीछे हैं, लेकिन DRC सरकार के नेतृत्व में हम तेजी से बढ़त बना रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस का प्रकोप जारी है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार पिछले 2 सप्ताह के भीतर अब तक लगभग 900 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 220 से अधिक संदिग्ध मौतें हुई हैं। वहीं युगांडा में गुरुवार तक 7 मामलों की पुष्टि हुई है। WHO विशेषज्ञों के अनुसार ये बीमारी उस समय होती है जब आप किसी संक्रमित की देखभाल में जुटे हों, और इसलिए परिवारों व मित्रों के लिए ये जरूरी है कि बीमार प्रियजन को छूने से बचा जाए। स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इबोला का फैलाव एक बेहद कठिन हालात में हो रहा है। DR कांगो का पूर्वी हिस्सा पहले से ही हिंसक टकराव, विस्थापन और भूख संकट से जूझ रहा है। इतुरी प्रांत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 12 लाख लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।
4: फिलहाल इबोला की बुंडी बुगियो प्रजाति से निपटने के लिए उपचार और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और संभावित उपायों की अभी पड़ताल की जा रही है। WHO के महानिदेशक

0: टेड्रोस एडेनम गेब्रियसिस हालात का जायजा लेने के लिए डीआर कांगो की यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय समुदायों को यह संदेश देने के लिए यहां आए हैं कि वे अकेले नहीं हैं। यूएन स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने हथियारबंद गुटों से युद्ध विराम के लिए सहमत होने की अपील की है ताकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी जरूरतमंद आबादी तक पहुंच सकें और इस बीमारी पर काबू पाया जा सके।
1: पिछले वर्ष विश्व भर में हिंसक टकराव संबंधी यौन हिंसा की 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2024 के आंकड़ों की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक संख्या है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और करिबियाई क्षेत्र में बलात्कार, यौन दास्ता व अगवा किए जाने को युद्ध के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
2: संघर्ष ग्रस्त इलाकों में यौन हिंसा के विषय पर यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये आंकड़े एक बढ़ते वैश्विक रुझान को दर्शाते हैं। इसके साथ ही असुरक्षा विस्थापन मामलों में उछाल आ रहा है और जीवित बचे व्यक्तियों के लिए वित्तीय साधन डगमगा रहे हैं, जिससे इस संकट को और हवा मिल रही है। रिपोर्ट बताती है कि हिंसक टकराव से प्रभावित 21 देशों में सरकारी और गैर सरकारी तत्वों ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन दास्ता, जबरन विवाह, तस्करी, अगवा किए जाने समेत अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। महिलाएं और लड़कियां मुख्य रूप से निशाना बनी, जबकि पुरुष और लड़के भी यौन हिंसा का शिकार हुए, अक्सर हिरासत केंद्रों में यातना के रूप में। इस दौरान भुक्तभोगियों की आयु 1 से 70 वर्ष तक दर्ज की गई।
0: रिपोर्ट के अनुसार संगठित आपराधिक समूहों समेत गैर सरकारी हथियारबंद गुटों ने समुदायों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करना जारी रखा। हिंसक टकराव से ग्रस्त इलाकों में छोटे हथियारों की व्यापक उपलब्धता होने की वजह से यौन हिंसा को हवा मिलने की आशंका जताई गई है। मानवीय सहायता प्रयासों के लिए सीमित पहुंच होने, असुरक्षा और वित्तीय संसाधनों की किल्लत के कारण दुर्व्यवहार मामलों में जानकारी जुटा पाना कठिन हो गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों से रोकथाम, जवाबदेही और पीड़ितों के लिए समर्थन को मजबूती देने का आग्रह किया गया है। इसके लिए कई कदम उठाने पर बल दिया गया है। मानवीय सहायता तक बेरोकटोक पहुंच, जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूती और चिकित्सा, मनोसामाजिक व कानूनी सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता।
1: विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाने की संभावना लगभग 50% तक पहुंच गई है और यह आशंका समय के साथ बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया खतरनाक गर्मी के एक दौर की ओर बढ़ रही है और यह लगभग निश्चित है कि अगले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या फिर उसके नजदीक बने रहेंगे। विस्तार जानकारी के साथ पूजा यादव और सचिन गौड़।
2: विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दुनिया खतरनाक गर्मी के दौर की ओर बढ़ रही है और अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड या उसके करीब बना रहने की लगभग निश्चित संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 से 2030 के बीच कम से कम एक वर्ष के लिए 2024 से अधिक गर्म होने की 86% संभावना है। इस अवधि में कम से कम एक वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की सीमा को कुछ समय के लिए पार कर सकता है। गौरतलब है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा महत्वपूर्ण है और इसके लंबे समय तक पार होने पर चरम मौसम, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्रों के जोखिम बढ़ सकते हैं।
0: हालांकि अस्थायी रूप से इस सीमा का पार होना ये नहीं दर्शाता कि जलवायु लक्ष्यों को पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कई दशकों तक लगातार तापमान वृद्धि आवश्यक होगी। इस साल के मौसमी रुझानों की वजह से 2027 अब तक का सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड बना सकता है। साथ ही आर्कटिक क्षेत्र अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म होगा और समुद्री बर्फ में गिरावट से पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविकाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। जर्मनी के कैथोलिक विद्यार्थियों के संघों के प्रतिनिधि छात्रों ने शुक्रवार को वैटिकन में संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। जर्मन कैथोलिक छात्रों का अभिवादन कर संत पापा लियो ने कहा, आद पेत्री सेदम अर्थात पेत्रुस के सिंहासन रोम तक आने का आपका फैसला उस कैथोलिक विश्वास से प्रेरित है जो आपकी प्रभु येसु के शिष्यों के तौर पर जोड़ने वाली सहभागिता और आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों को परिभाषित करता है। जर्मन कैथोलिक संघों के छात्रों की कैथोलिक अस्मिता के बारे में संत पापा ने कहा कि विश्वास में उनका दृढ़ समर्पण उनके संघों के 4 सिद्धांतों में समाहित है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, और ये हैं धर्म, विज्ञान, मैत्री और मातृभूमि। संत पापा ने कहा, अतीत की तानाशाही और विचारधाराओं के समक्ष कैथोलिक धर्म कभी भी सिर्फ दिखावा या लेबल नहीं रहा, बल्कि यह विश्वविद्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर साझेदारी का एक तरीका रहा है। सुसमाचारी खमीर की तरह आपका भ्रातृ संघ वैज्ञानिक और राजनैतिक वातावरण सहित अलग अलग अकादमिक, व्यावसायिक और सामाजिक दायरों में भी बढ़ता रहता है। आपकी गतिविधियों का सामुदायिक पहलू न सिर्फ आपके देश को बल्कि संपूर्ण यूरोप को लाभ पहुंचाता है जिसका केंद्र जर्मनी है। संत पापा ने कहा कि इस भौगोलिक केंद्रीयता के साथ आप उचित ही मानव व्यक्ति की सांस्कृतिक केंद्रीयता को जोड़ते हैं जो ईश्वर की सृष्टि और स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। उन्होंने छात्र संघ के सदस्यों से कहा कि शिल्प वैज्ञानिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करते हुए आपको हमारी आम इंसानियत के अध्ययन और उसे प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे तर्क का इस्तेमाल होता है वैसे ही विश्वास की रोशनी भी आज के समय के वादों और धोखे को रोशन करती है और हर इंसान से एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहायता देने का हर संभव प्रयास करने की मांग करती है। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न छात्रों से संत पापा ने कहा कि इनसे उन्हें अवश्य ही यह अनुभव हुआ होगा कि यह सिर्फ एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि एक बुलाहट या मिशन का अनुसरण है। उन्होंने कहा कि सत्य की तलाश एक सर्वोत्तम चीज है जिसकी चाह रखना और जिसे प्रोत्साहन देना आवश्यक है। जर्मनी के समस्त कैथोलिक छात्रों को संत पापा लियो 14वें ने आमंत्रित किया कि वे यह स्वीकार करें कि संस्कृति मानवता की भलाई है, सत्य हमें स्वतंत्र करता जबकि झूठ और मिथ्यावादिता नामों और चीजों को भ्रष्ट कर देती है। उन्होंने कहा, लोगों को और विशेष रूप से निम्न, गरीब या बीमार लोगों को अमानवीय बनाने वाली चीजों के समक्ष मैं आपसे ख्रिस्तीय मानवतावाद के गवाह बनने का आग्रह करता हूँ। संत पापा ने कहा, इस संदर्भ में आपके एसोसिएशन के एक जाने माने पूर्व सदस्य संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की कही बात पर गहराई से विचार करने हेतु आपको आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने 2011 में बुंडेस्टाग को संबोधन में कहा था, एक सुसंगत इंसान की इकोलॉजी विकसित करें, इंसान का भी एक स्वभाव है जिसका सम्मान अनिवार्य है। वैटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ जून माह के अंत में कार्डिनल मंडल सभा में भाग लेने वाले कार्डिनलों को लिखे एक पत्र में कार्डिनल जोआन्नी बत्तिस्ता रे ने संत पापा पॉल षष्ठम भवन में आयोजित 4 कार्य शिविरों के शीर्षकों की घोषणा की। संत पापा लियो 14वें द्वारा 26, 27 और 29 जून को बुलाई गई कार्डिनल मंडल की सभा में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और स्थानीय कलीसियाओं के जीवन पर विचार विमर्श के साथ साथ संत पापा के विश्वपत्र मनीफिका उमानितास पर चर्चा तथा धर्म सभा में चर्चित विषयों को लागू करना शामिल होगा। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष कार्डिनल जोआन्नी बत्तिस्ता रे द्वारा 3 जून को कार्डिनलों को प्रेषित पत्र में उक्त विषयों की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि कार्डिनल मंडल की उक्त सभा का लक्ष्य आज कलीसिया के जीवन और मिशन संबंधी विशेष महत्व के मुद्दों पर परस्पर श्रवण, आपसी समझदारी और साझा चिंतन के स्थान के रूप में कार्य करना है। कार्डिनल रे ने कहा कि उक्त कंसिस्ट्री का पहला सत्र अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और स्थानीय कलीसियाओं की वास्तविकता पर और दूसरा और तीसरा सत्र 25 मई को प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर केंद्रित रहेगा। इस विश्व पत्र का 5वां अध्याय विचाराधीन होगा जिसका शीर्षक है सत्ता की संस्कृति और प्रेम की सभ्यता।
उन्होंने कहा कि इस अध्याय में संत पापा लियो स्मरण दिलाते हैं कि ध्रुवीकरण, हिंसा और बढ़ते संघर्ष से चिन्हित दुनिया में शांति अन्य मुद्दों के बीच केवल एक मुद्दा नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सामान्य भलाई के लिए एक शर्त है और लोगों की नैतिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया द्वारा 4 जून को मनाए गए ख्रीस्त देह पर्व पर संत पापा लियो 14वें ने 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर ख्रिस्तियों के लिए यूखरिस्त के महत्व को समझाया। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, यूखरिस्त में हम इस यथार्थ का स्पष्ट रूप देखते हैं कि हम ख्रीस्त की कलीसिया हैं, उनके सदस्य हैं, उनका शरीर हैं, हम उनमें भाई बहन हैं और भले ही हम कई और अलग अलग हैं, ख्रीस्त में हम सब एक हैं। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, यूखरिस्त हमें न्याय और साझेदारी के प्रति उदार बनाकर उन लोगों के प्रति विशेष चिंता रखना सिखाता है जो गरीबी अथवा हाशिए पर रहने के बोझ के तले दबे हैं। और अपने तीसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, ऐसी स्थिति में जब नए आर्थिक और तकनीकी नेटवर्क बहिष्कार, अलगाव और निर्भरता उत्पन्न करते हैं, तब यूखरिस्त से पोषित कलीसिया को एक अलग प्रतिमान दिखाने के लिए बुलाया गया है। ऐसा प्रतिमान जो मानवीय रिश्तों को बचाए रखे, अदृश्य को आवाज दे और सुनिश्चित करे कि सभी प्रक्रियाएं लोगों की प्रतिष्ठा का सम्मान करने के लक्ष्य से संपादित की जाए। संत पापा लियो 14वें की 6 जून से 12 जून तक आयोजित स्पेन यात्रा की पृष्ठभूमि में विश्वव्यापी कैथलिक उदारता संस्था कारितास की स्पानी शाखा के महासचिव मरिया गोंजालेस से वैटिकन न्यूज के संवाददाताओं ने बातचीत की। संत पापा लियो अपनी स्पेन प्रेरित यात्रा के दौरान कारितास की स्पानी शाखा द्वारा बेघर लोगों की सेवा में संचालित सेदिया 24 होरास नामक समाज सेवा आश्रम की भी भेंट करेंगे। इस संदर्भ में किए प्रश्न के उत्तर में मरिया गोंजालेस ने कहा कि सबसे कमजोर लोगों के साथ संत पापा लियो की नजदीकी जागरूकता बढ़ाने और एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने का एक बड़ा मौका होगा जिस पर हमारे देश में कई लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। उन्होंने कहा कि विश्व की दुर्बलता को अपनाने का संत पापा लियो का तरीका दान पुण्य में आगे बढ़ते रहने और यह समझने के लिए एक वास्तविक प्रेरणा होगी कि प्रेम का पहला परिणाम दूसरों के लिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करना और उनकी भलाई की कोशिश करना है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। जनरल असेंबली हॉल में मंगलवार 2 जून को हुए गोपनीय मतदान में बांग्लादेश के विदेश मंत्री को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के उनके प्रतिद्वंद्वी अंद्रयास काकोरिस को 91 मत हासिल हुए। 193 सदस्य देशों वाले यूएन महासभा में कुल 190 वोट डाले गए और कोई मत अमान्य नहीं था। यूएन महासभा की वार्षिक अध्यक्षता भौगोलिक आधार पर 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी बारी से साझा की जाती है और सितंबर 2026 से आरंभ होने वाले 81वें सत्र की बागडोर की उम्मीदवारी इस वर्ष एशिया प्रशांत समूह के पास थी। राजनयिक रहमान ने निर्वाचित होने के बाद कहा कि वह इस दायित्व को एक ऐसे क्षण में संभालेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है, और इसके मद्देनजर उनका कार्यकाल भरोसे की बहाली, रूपांतरकारी बदलावों के प्रबंधन और सर्वजन के लिए वादों को साकार करने पर केंद्रित होगा। महासभा 81वें सत्र के लिए उनकी थीम है विश्वास की पुनर्व्यवस्था, परिवर्तन का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन की आवश्यकताओं को पूरा करे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 विशिष्ट प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है: शांति व सुरक्षा, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी, जलवायु कार्यवाही व पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, उभरती टेक्नोलॉजी की संचालन व्यवस्था और यूएन सुधार। विदेश मंत्री रहमान अपना एक वर्षीय कार्यकाल 8 सितंबर को शुरू करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप का सामना करने के प्रयासों में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अलबत्ता परीक्षण, निगरानी और सामुदायिक विश्वास जीतने में अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने इबोला प्रकोप से निपटने में DRC के साथ खड़े होने का संकल्प व्यक्त किया। डॉक्टर टेड्रोस DRC की यात्रा से लौटने के बाद बुधवार को जिनेवा में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए उम्मीद जताई, इस बीमारी के प्रकोप को एक बड़ी बढ़त मिल गई थी और हम अब भी पीछे हैं, लेकिन DRC सरकार के नेतृत्व में हम तेजी से बढ़त बना रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस का प्रकोप जारी है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार पिछले 2 सप्ताह के भीतर अब तक लगभग 900 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 220 से अधिक संदिग्ध मौतें हुई हैं। वहीं युगांडा में गुरुवार तक 7 मामलों की पुष्टि हुई है। WHO विशेषज्ञों के अनुसार ये बीमारी उस समय होती है जब आप किसी संक्रमित की देखभाल में जुटे हों, और इसलिए परिवारों व मित्रों के लिए ये जरूरी है कि बीमार प्रियजन को छूने से बचा जाए। स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इबोला का फैलाव एक बेहद कठिन हालात में हो रहा है। DR कांगो का पूर्वी हिस्सा पहले से ही हिंसक टकराव, विस्थापन और भूख संकट से जूझ रहा है। इतुरी प्रांत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 12 लाख लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।
4: फिलहाल इबोला की बुंडी बुगियो प्रजाति से निपटने के लिए उपचार और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और संभावित उपायों की अभी पड़ताल की जा रही है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडेनम गेब्रियसिस हालात का जायजा लेने के लिए DR कांगो की यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय समुदायों को यह संदेश देने के लिए यहां आए हैं कि वे अकेले नहीं हैं। UN स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने हथियारबंद गुटों से युद्ध विराम के लिए सहमत होने की अपील की है ताकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी जरूरतमंद आबादी तक पहुंच सकें और इस बीमारी पर काबू पाया जा सके।
2: पिछले वर्ष विश्व भर में हिंसक टकराव संबंधी यौन हिंसा की 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2024 के आंकड़ों की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक संख्या है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और करिबियाई क्षेत्र में बलात्कार, यौन दास्ता व अगवा किए जाने को युद्ध के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: संघर्षग्रस्त इलाकों में यौन हिंसा के विषय पर UN महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये आंकड़े एक बढ़ते वैश्विक रुझान को दर्शाते हैं। इसके साथ ही असुरक्षा विस्थापन मामलों में उछाल आ रहा है और जीवित बचे व्यक्तियों के लिए वित्तीय साधन डगमगा रहे हैं, जिससे इस संकट को और हवा मिल रही है। रिपोर्ट बताती है कि हिंसक टकराव से प्रभावित 21 देशों में सरकारी और गैर सरकारी तत्वों ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन दास्ता, जबरन विवाह, तस्करी, अगवा किए जाने समेत अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। महिलाएं और लड़कियां मुख्य रूप से निशाना बनी, जबकि पुरुष और लड़के भी यौन हिंसा का शिकार हुए, अक्सर हिरासत केंद्रों में यातना के रूप में। इस दौरान भुक्तभोगियों की आयु 1 से 70 वर्ष तक दर्ज की गई।
4: रिपोर्ट के अनुसार संगठित आपराधिक समूहों समेत गैर सरकारी हथियारबंद गुटों ने समुदायों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करना जारी रखा। हिंसक टकराव से ग्रस्त इलाकों में छोटे हथियारों की व्यापक उपलब्धता होने की वजह से यौन हिंसा को हवा मिलने की आशंका जताई गई है। मानवीय सहायता प्रयासों के लिए सीमित पहुंच होने, असुरक्षा और वित्तीय संसाधनों की किल्लत के कारण दुर्व्यवहार मामलों में जानकारी जुटा पाना कठिन हो गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों से रोकथाम, जवाबदेही और पीड़ितों के लिए समर्थन को मजबूती देने का आग्रह किया गया है। इसके लिए कई कदम उठाने पर बल दिया गया है। मानवीय सहायता तक बेरोकटोक पहुंच, जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूती और चिकित्सा, मनोसामाजिक व कानूनी सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता।
2: विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाने की संभावना लगभग 50% तक पहुंच गई है और यह आशंका समय के साथ बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया खतरनाक गर्मी के एक दौर की ओर बढ़ रही है और यह लगभग निश्चित है कि अगले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या फिर उसके नजदीक बने रहेंगे। विस्तार जानकारी के साथ पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दुनिया खतरनाक गर्मी के दौर की ओर बढ़ रही है और अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड या उसके करीब बना रहने की लगभग निश्चित संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 से 2030 के बीच कम से कम एक वर्ष के लिए 2024 से अधिक गर्म होने की 86% संभावना है। इस अवधि में कम से कम एक वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की सीमा को कुछ समय के लिए पार कर सकता है। गौरतलब है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा महत्वपूर्ण है और इसके लंबे समय तक पार होने पर चरम मौसम, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्रों के जोखिम बढ़ सकते हैं।
4: हालांकि अस्थायी रूप से इस सीमा का पार होना ये नहीं दर्शाता कि जलवायु लक्ष्यों को पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कई दशकों तक लगातार तापमान वृद्धि आवश्यक होगी। इस साल के मौसमी रुझानों की वजह से 2027 अब तक का सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड बना सकता है। साथ ही आर्कटिक क्षेत्र अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म होगा और समुद्री बर्फ में गिरावट से पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविकाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। जर्मनी के कैथोलिक विद्यार्थियों के संघों के प्रतिनिधि छात्रों ने शुक्रवार को वेटिकन में संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। जर्मन कैथोलिक छात्रों का अभिवादन कर संत पापा लियो ने कहा, अद पेत्री सेदम अर्थात पेत्रुस के सिंहासन रोम तक आने का आपका फैसला उस कैथोलिक विश्वास से प्रेरित है जो आपकी प्रभु येसु के शिष्यों के तौर पर जोड़ने वाली सहभागिता और आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों को परिभाषित करता है। जर्मन कैथोलिक संघों के छात्रों की कैथोलिक अस्मिता के बारे में संत पापा ने कहा कि विश्वास में उनका दृढ़ समर्पण उनके संघों के चार सिद्धांतों में समाहित है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, और ये हैं धर्म, विज्ञान, मैत्री और मातृभूमि। संत पापा ने कहा, अतीत की तानाशाही और विचारधाराओं के समक्ष कैथोलिक धर्म कभी भी सिर्फ दिखावा या लेबल नहीं रहा, बल्कि यह विश्वविद्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर साझेदारी का एक तरीका रहा है। सुसमाचारी खमीर की तरह आपका भ्रातृ संघ वैज्ञानिक और राजनैतिक वातावरण सहित अलग अलग अकादमिक, व्यावसायिक और सामाजिक दायरों में भी बढ़ता रहता है। आपकी गतिविधियों का सामुदायिक पहलू न सिर्फ आपके देश को बल्कि संपूर्ण यूरोप को लाभ पहुंचाता है जिसका केंद्र जर्मनी है। संत पापा ने कहा कि इस भौगोलिक केंद्रीयता के साथ आप उचित ही मानव व्यक्ति की सांस्कृतिक केंद्रीयता को जोड़ते हैं जो ईश्वर की सृष्टि और स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। उन्होंने छात्र संघ के सदस्यों से कहा कि शिल्प वैज्ञानिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करते हुए आपको हमारी आम इंसानियत के अध्ययन और उसे प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे तर्क का इस्तेमाल होता है वैसे ही विश्वास की रोशनी भी आज के समय के वादों और धोखे को रोशन करती है और हर इंसान से एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहायता देने का हर संभव प्रयास करने की मांग करती है। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न छात्रों से संत पापा ने कहा कि इनसे उन्हें अवश्य ही यह अनुभव हुआ होगा कि यह सिर्फ एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि एक बुलाहट या मिशन का अनुसरण है। उन्होंने कहा कि सत्य की तलाश एक सर्वोत्तम चीज है जिसकी चाह रखना और जिसे प्रोत्साहन देना आवश्यक है। जर्मनी के समस्त कैथोलिक छात्रों को संत पापा लियो 14वें ने आमंत्रित किया कि वे यह स्वीकार करें कि संस्कृति मानवता की भलाई है, सत्य हमें स्वतंत्र करता जबकि झूठ और मिथ्यावादिता नामों और चीजों को भ्रष्ट कर देती है। उन्होंने कहा, लोगों को और विशेष रूप से निम्न, गरीब या बीमार लोगों को अमानवीय बनाने वाली चीजों के समक्ष मैं आपसे ख्रिस्तीय मानवतावाद के गवाह बनने का आग्रह करता हूँ। संत पापा ने कहा, इस संदर्भ में आपके एसोसिएशन के एक जाने माने पूर्व सदस्य संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की कही बात पर गहराई से विचार करने हेतु आपको आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने 2011 में बुंडेस्टाग को संबोधन में कहा था, एक सुसंगत इंसान की इकोलॉजी विकसित करें, इंसान का भी एक स्वभाव है जिसका सम्मान अनिवार्य है। वेटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ जून माह के अंत में कार्डिनल मंडल सभा में भाग लेने वाले कार्डिनलों को लिखे एक पत्र में कार्डिनल जोआन्नी बत्तिस्ता रे ने संत पापा पॉल षष्ठम भवन में आयोजित चार कार्य शिविरों के शीर्षकों की घोषणा की। संत पापा लियो 14वें द्वारा 26, 27 और 29 जून को बुलाई गई कार्डिनल मंडल की सभा में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और स्थानीय कलीसियाओं के जीवन पर विचार विमर्श के साथ साथ संत पापा के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर चर्चा तथा धर्म सभा में चर्चित विषयों को लागू करना शामिल होगा। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष कार्डिनल जोआन्नी बत्तिस्ता रे द्वारा 3 जून को कार्डिनलों को प्रेषित पत्र में उक्त विषयों की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि कार्डिनल मंडल की उक्त सभा का लक्ष्य आज कलीसिया के जीवन और मिशन संबंधी विशेष महत्व के मुद्दों पर परस्पर श्रवण, आपसी समझदारी और साझा चिंतन के स्थान के रूप में कार्य करना है। कार्डिनल रे ने कहा कि उक्त कंसिस्ट्री का पहला सत्र अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और स्थानीय कलीसियाओं की वास्तविकता पर और दूसरा और तीसरा सत्र 25 मई को प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर केंद्रित रहेगा। इस विश्व पत्र का 5वां अध्याय विचाराधीन होगा जिसका शीर्षक है सत्ता की संस्कृति और प्रेम की सभ्यता।
उन्होंने कहा कि इस अध्याय में संत पापा लियो स्मरण दिलाते हैं कि ध्रुवीकरण, हिंसा और बढ़ते संघर्ष से चिन्हित दुनिया में शांति अन्य मुद्दों के बीच केवल एक मुद्दा नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सामान्य भलाई के लिए एक शर्त है और लोगों की नैतिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया द्वारा 4 जून को मनाए गए ख्रीस्त देह पर्व पर संत पापा लियो 14वें ने 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर ख्रिस्तियों के लिए यूखरिस्त के महत्व को समझाया। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, यूखरिस्त में हम इस यथार्थ का स्पष्ट रूप देखते हैं कि हम ख्रीस्त की कलीसिया हैं, उनके सदस्य हैं, उनका शरीर हैं। हम उनमें भाई बहन हैं और भले ही हम कई और अलग अलग हैं, ख्रीस्त में हम सब एक हैं। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, यूखरिस्त हमें न्याय और साझेदारी के प्रति उदार बनाकर उन लोगों के प्रति विशेष चिंता रखना सिखाता है जो गरीबी अथवा हाशिए पर रहने के बोझ के तले दबे हैं। और अपने तीसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लिखते हैं, ऐसी स्थिति में जब नए आर्थिक और तकनीकी नेटवर्क बहिष्कार, अलगाव और निर्भरता उत्पन्न करते हैं, तब यूखरिस्त से पोषित कलीसिया को एक अलग प्रतिमान दिखाने के लिए बुलाया गया है। ऐसा प्रतिमान जो मानवीय रिश्तों को बचाए रखे, अदृश्य को आवाज दे और सुनिश्चित करे कि सभी प्रक्रियाएं लोगों की प्रतिष्ठा का सम्मान करने के लक्ष्य से संपादित की जाए। संत पापा लियो 14वें की 6 जून से 12 जून तक आयोजित स्पेन यात्रा की पृष्ठभूमि में विश्वव्यापी कैथलिक उदारता संस्था कारितास की स्पानी शाखा के महासचिव मरिया गोंजालेस से वैटिकन न्यूज के संवाददाताओं ने बातचीत की। संत पापा लियो अपनी स्पेन प्रेरितिक यात्रा के दौरान कारितास की स्पानी शाखा द्वारा बेघर लोगों की सेवा में संचालित सेदिया 24 होरास नामक समाज सेवा आश्रम की भी भेंट करेंगे। इस संदर्भ में किए प्रश्न के उत्तर में मरिया गोंजालेस ने कहा कि सबसे कमजोर लोगों के साथ संत पापा लियो की नजदीकी जागरूकता बढ़ाने और एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने का एक बड़ा मौका होगा जिस पर हमारे देश में कई लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। उन्होंने कहा कि विश्व की दुर्बलता को अपनाने का संत पापा लियो का तरीका दान पुण्य में आगे बढ़ते रहने और यह समझने के लिए एक वास्तविक प्रेरणा होगी कि प्रेम का पहला परिणाम दूसरों के लिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करना और उनकी भलाई की कोशिश करना है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।